रेडियो काठमाडौँ 92.1 द्वारा उत्पादित लोकप्रिय कार्यक्रम इन्द्रेणी चन्द्रमणि गौतमको साथमा रेडियो काठमाडौँ नेटवर्कबाट देशैभरि

0: सस्तो, टिकाउ अनि आकर्षक यूपीवीसी झ्याल ढोकाका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। क्षमा देवी बिल्डिङ मटेरियल्स प्राइभेट लिमिटेड, मुख्य कार्यालय कौशलटार भक्तपुर, शाखा कार्यालय कलमकी ढुङ्गे अड्डा पिपल बुटचोक काठमाडौँ।
1: पावर ब्रॉडकास्टिंग, कीप लिसनिंग।
2: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बीमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
3: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवन को लागि।
4: रंग बहार रंग बहार,
5: बर्जर संगे उपहारे उपहार, बम्पर मा यामाहा रेजियार,
4: बर्जर पेंस ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
5: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि। घर रंगाओ, खुशी बढाओ, उपहार जित्ने अवसर पाओ।
4: बर्जर पेंस।

0: रेडियो काठमाडौँ 92.1 मेगाहर्ज परिवर्तन सम्भव छ।
1: लोकमाला
2: लोकमाला
3: लोकमाला।

0: सस्तो, टिकाउ अनि आकर्षक यूपीवीसी झ्याल ढोकाका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। क्षमा देवी बिल्डिङ मटेरियल्स प्राइभेट लिमिटेड, मुख्य कार्यालय कौशलटार भक्तपुर, शाखा कार्यालय कलंकी ढुङ्गे अड्डा पिपल बुटचोक काठमाडौँ।
1: पावर ब्रॉडकास्टिंग, कीप लिसनिंग।